देवी ही बहु करिए थी कमा गैम का दिवे ही बहुगे आर कादा थका मुसलिसा गाफ़ाई।

0: Lobby, lobby.
1: राहुल, आज मैं घर पे बिल्कुल अकेली हूँ।
2: ओह, देखो शीतल, बिल्कुल मत घबराना और खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके सोना। और हाँ, एक टॉर्च अपने पास रखना।
1: राहुल, try to understand, मेरे घर में आज कोई नहीं है।
2: हाँ?

होती में इशारा वा नहीं, रीत रीत रोड़ी का उपाद जारे का, होती में होती